एक बार लो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। आई एम पंडित विनय शर्मा एंड दिस इज प्रवचन। जय सीताराम।

भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना ओ लॉर्ड प्लीज कंटिन्यू टू बी माय सेवियर एंड प्रोटेक्टर अंटिल नाउ यू हैव टेकन ग्रेट केयर इन मी प्लीज कंटिन्यू टू डू सो इन द फ्यूचर इफ आई हैपन टू फॉरगेट यू लॉर्ड संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना आई बेग ऑफ यू ओ मास्टर नेवर फॉरगेट मी दिस पावरफुल माया ऑफ दिस वर्ल्ड इज एवर रेडी टू अटैक मी प्लीज डू नॉट स्टैंड एज अ साइलेंट ऑनलुकर बट कम टू माई रेस्क्यू एंड डू सो क्विकली

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

Radio Jogarty, 102.7 FM. I know many of you just are loving that selection right now. Nahi Chahiye Rang Mahal. Nahi Chahiye Rang Mahal Na Dhan Daulat Ke Shaan Hum To Maange Tujhe Se Malik Ek Santosh Ke Daan Ke Ghar Ghar Mein Khushiyali Ho सदा सुख की हरियाली हो तू ना हमको जाने दिया है तू ही पालनहार तेरे दया से फूले फले हम सब का घर संसार नहीं चाहिए हीरे मोती ना रातों के हार सुख की बदले दुख देने की अगर भगवान तेरी दुख हो शाने की शक्ति दे या ही परताना